0: सोने घर की निशानी होंगी है शानदार फ्लोरिंग, जिथे कदम रखद ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी का पता पूछन लग जान। ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर, जिथे तुसी ले सकते हो अपनी पसंद की फ्लोरिंग का समान। फ्लोरिंग घर का होवे या होवे कमर्शियल, नवा लगाना होवे या होवे रेनोवेशन का प्लान, कारपेट हार्डवुड लेमिनेट टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग के डिजाइनर नाल भरिया है इन्हों का शोरूम। अज ही इन्हों के शोरूम ते पुजो 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कैलगरी कारपेट एम्पायर। फोन नंबर 403-510-1515 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो। किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट, सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे। साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिलकुल परफेक्ट आउण। ए सब कुछ बिलकुल वाजिब प्राइस ते। पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करते हाँ। पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो। तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए एक फोटो एक वार।
2: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
3: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा। कीमतां कट ते क्वालिटी A1।
2: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
3: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां। हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक
2: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर। पहली लोकेशन 331-3690 वेस्ट विंड ड्राइव।
3: दूजी लोकेशन 117-7770 एवेन्यू।
2: तीजी लोकेशन 570-6520 फॉल्कन रिज बुलेवार्ड।
3: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्वायर।
2: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे।
3: छेवी लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी।
2: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
3: 403-835-2222।
4: रेडियो सुरसंगम 94.7 FM सुन रहे सारे श्रोतियां नूं कुलदीप सिंह वल्लों सत श्री अकाल जी। अज दिन वीरवार मई महीने की 28 तरीक सन 2026 हुण तो लैके 6 बजे तक मेरा ते आप जी का साथ रहेगा। अज दे इस प्रोग्राम विच असीं हमेशा मां खबरां ते चर्चा करांगे। 8 बजे एक विशेष गलबात पेश कीती जावेगी, उस दे बारे भी जानकारी देवांगे आप जी नूं कि एक मीडिया चैनल द्वारा पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान होरां नाल कीती गई गलबात उह पेश कीती जावेगी रात 8 बजे ते 9 बजे जितेंद्र पन्नू जी नाल प्रोग्राम पेश किया जाएगा। ये साढ़े अज के बाकी रेंदे प्रोग्राम ते उन्हां दा वेरवा। अज दे इस प्रोग्राम दे विच इस तो पहला के खबरां वल्लों चलीए हमेशा वांग मौसम की थोड़ी जी गलबात कर लईए। इस वेले कैलगरी शहर विच बदलवाई है, किते किते धुप भी है, 26 डिग्री सैलसीयस है। इसे तरह टैंपरेचर रहने की संभावना है ते अधिक रात वेले हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। जो कल दसी गई सी वो तुसी कह रहे होवोगे कि तुसी दे मौसम दा हाल दस्या सी कि हल्की फुल्की बारिश होवेगी। नेचर है जी, कुदरत है ते इसका पूर्ण तौर ते भेद पाउणा साइंसदानां दे वस दी गल नहीं है ते असीं ते सिर्फ जानकारी पहुंचाउण वाले हां, साडे कोल कोई वैदर रडार नहीं है। खैर जे असीं आउण वाले दिनों की गल करिए कल नूं 27 डिग्री इसे तरह का मौसम हो सकता है। उस तो अगले दिन सनिचरवार को थोड़ी गर्मी तो राहत होगी तो 17-18 के आसपास टैंपरेचर दिन वेले तो बारिश होगी। 5 मिलीमीटर तक सनिचरवार सवेरे बारिश हो सकती है तो एतवार को भी सारा दिन बारिश पैण की संभावना है तो सोमवार को भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। सो वीकेंड से टोटल कुल मिला के 10-15 मिलीमीटर बारिश हो सकती है, जिस नाल जो गर्मी वाला माहौल है यह भी बदलेगा ते जो साढ़े फुल बूटे ने सब्जियां ने होर चीज़ां साढ़े गार्डन ने जां साढ़े लॉन ने यार्ड ने।

तेल, नेचुरल गैस, बिजली, एलुमिनियम, पोटाश, निकल, कॉपर ते होर बहुत सारी इंडस्ट्रियल चीजा लई डिपेंडेंट ने ते दोवें देशां इन्हां सैक्टर दे विच होर ज्यादा व्यापार कर सकदियां ने। पर इन्हां सारियां चीजा दे जिन्हां दे मार्क कारनी ने नाम लए ने इन्हां कल्ली कल्ली चीजा का जिक्र करके डोनल्ड ट्रंप बार बार पिछले साल ये कह चुके ने कि सानू कनेडा कोलों कुछ नहीं चाहिए ते 51वीं स्टेट बनाने वाला गल वक्री रखते हैं कि वह चाहिए सानू। सो कारनी ने यह नहीं कहा कि इन्ह जे आइडियाज रखते ने इन का मोहरे की जवाब मिलेगा, पर वह कहते हैं कि गलबात असी कर रहे हैं तो असी आइडियाज नवे नवे दे रहे हैं। इधर कनेडा दे विच जो सरकार है इन्हों वालों कहा गया कि साड़ी गलबात अमरीका नाल भावें लगता इस तरह पहली नज़रे कि नहीं किसी पासे लग रही, पर गलबात साड़ी लगातार चलती रह जिहड़ी यूएसए नाल चल रही है। सो इन्हों का जिहड़ा सिस्टम है जी यूएसए दे नाल कैनेडा का वह इस वेले कोई बहुता वधिया नहीं है ते इस मुद्दे ते कनेडा वाले अपने आप नूं किसी पोजिशन ते लिजाण की कोशिश कर रहे ने। इधर कैनेडा दे विच बैंक ऑफ कैनेडा ने कहा कि हाउस होल्ड स्ट्रगलिंग ते इकोनमी जिहड़ी आ उह स्ट्रगल जिहड़ी आ करदी रहेगी। बैंक ऑफ कैनेडा ने कहा कि साडी इकोनमी जिहड़ी है एक ग्लोबल एनवायरमेंट एक दुनिया भर का जिहड़ा एक वातावरण है वह उहदे विच इसे तरह नैविगेट करदी रहेगी ते वनरेबल होवेगी ते जिस नाल कैनेडा दे जिहड़े मल्टीपल फ्रंट्स ते जिहड़े ने पोटेंशियल शॉक्स जिहड़े ने भाव के उन्हां नूं झटके लगण लई उन्हां नूं इह जिहड़ी इकोनमी है उह लगण लई उन्हां नूं तैयार रहना चाहिए किस्म दा। फाइनैंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट अज उन्हां ने जारी की है जिस विच जो कि कनेडियन फाइनैंशियल सिस्टम दा उहदी इक किस्म दा पैमाना है ते कि उह दुनिया दे विच लग रहे इस तरह के आर्थिक झटकियां नूं सहन कर सकदी है। इस चीज़ नूं रीड करती एक रिपोर्ट जिहड़ी है जिस विच सीनियर डिप्टी गवर्नर कैरोलाइन रॉजर्स, डिप्टी गवर्नर टोनी ग्रेवल ये सारे शामिल सी ते इन्हां ने रिपोर्ट जिहड़ी है तैयार की है। ते कैनेडा दे विच जिहड़े रिस्क हैगे ने जी उन्हां दे विच उह कहिंदे ने कि ज्यादा जिहड़ा है ग्लोबल अनसर्टेनिटी का रिस्क है वह मिडल ईस्ट की जंग दे विचों उपजदा है। कॉन्फलिक्ट जिहड़ा फरवरी के अखीर में शुरू होया ते इहदे नाल ग्लोबल अनसर्टनिटी दुनिया के अनिश्चितता का माहौल जिहड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया ते कई मार्केट्स के उछल उछल पुथल पुथल जिहड़ी है जी वह देखी गई है। सो पिछले साल की रिपोर्ट जिहड़ी बैंक ऑफ कैनेडा की सी वह यूएसए के ड्यूटीज़ के उपर सी, पर ऐतकी की जिहड़ी है जी उस विच ग्लोबल पद्धर ते जो अनसर्टनिटी है उसनू लैके ज्यादा चिंता इस विच दिखाई गई है। प्रोग्राम के पहले हिस्से ब्रेक का समा हो चलिया जी ते दस देव कि दूसरे हिस्से काफ़ी सारिया खबर बाकी ने जिद एक ताज़ा खबर जी है जी वह आई है कि बिश्नोई गैंग वालों जड़ा है कनेडियन पुलिस चिट्ठी लिखी गई है जिस बड़िया धमकियां दिती गई ने बारे गलबात करा प्रोग्राम अगे चल के असी की कर सकते हैं। सो ਇਹ ਸੰਸਨੀ ਖੇਜ਼ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਉਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਤੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 94.7 FM ਰੇਡੀਓ ਸਰਸੰਗਮ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਈਡੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਤ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜੀ।